भगवान का घर है हमारी सभी श्री वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्सुम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 032-65-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-62-66-11। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए सुंदर और सुंदर भजन पेश की गए हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम, सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गए है। भजन यात्रा का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और ये प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। भजन यात्रा प्रोग्राम में अगला भजन जो प्रोग्राम में होगा, ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है।

भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं।

शंकर जी के आवास में अभी आपने सुना प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले अब की बार बाबला जी के आवास में ये सुन

सुनने वालों की सेवा में बस पीछ की गई। सुनने वालों चले प्रोग्राम में श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में। जरूर और जरूर सुनते ही रहे।

0: और रेडियो SBS की सर ये गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवास में श्री हनुमान चालीसा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। सुनने वालों चले अब की बार आप सभी सुनने वालों की सेवा में बजरंग बाण पेश किया जा रहा है, उसके बाद आरती भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। रेडियो SBS की जरिए जरूर सुनते ही रहना। तो चले यहां से प्रोग्राम में बजरंग बाण की ओर हम आपको ले चलते हैं।
1: रुद्र के गुणों की झलक आंचल के दीप की तरह स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्री रुद्र शमशान वासी हैं, श्री हनुमान जी गिरिवन वासी हैं। शिव जी ने विषपान किया था, हनुमान जी ने सूर्य बिंब को ही निगल लिया था। श्री शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं, श्री हनुमान जी को नाग यज्ञोपवीति कहा गया है। शिव जी आशुतोष हैं, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी भी दुखों के दलदल में फंसे हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलेउ हनुमाना।

सुंदर सा बजरंग बान बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी जो आज नौकरी करने वाले है, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारी सभी वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

सानू और अलका जी के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 8:00 प्रोग्राम में 11 मिनट वेटेड हो चुका है। मंगलवार का दिन 8 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। आज का मौसम थोड़ा बदली बदली सा मौसम होने वाले हैं। कहीं कहीं अंधेरा अंधेरा मौसम, कहीं कहीं थोड़ी सी धूप दिखाई देगा और कहीं कहीं रिमझिम बारिश होगा और कहीं कहीं जोड़ तोड़ से बारिश होने वाले है। फिर भी आप सभी सुनने वालों को एक खूबसूरत सुहाना दिन और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर फॉलो करते ही रहना। तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी। प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। कुछ सुनने वालों है जो सफर कर रहे हैं नौकरी की ओर, काम की ओर, मन लगाकर काम करना। शुभ दिन आप सभी को भी। सभी बच्चों जो स्कूल की ओर जा रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, ook een hele mooie dag. Our Radio SBS आज मंगलवार का प्रोग्राम आप सभी जरूर सुनते ही रहना। अनुराधा पोटवाल एंड उदित नारायण, लाल दुपट्टा मल मल का फिल्म का नाम।

सुनुरा रिपोर्ट वाले उदित नारायण की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा और उम्मीद है कि गाना सुनकर और काफी पसंद किया आज सुबह की प्रोग्राम में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। कुमार सानू एंड साधना सरगम। अब इसे क्या कॉन्सर्ट था जो बीते हुए रविवार पेश हुआ है आफास लाइफ में कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल का। नतुलक वक्त का दीमान सिंह कुमार सानू।

साधना सरगम की आवाज में गाना आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई दामनी फिल्म का नाम खूबसूरत प्यार भरी गीत आज की सुबह की प्रोग्राम में पेश की गई। मंगलवार का दिन है, 8 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। शहरी उत्तराखंड से रेडियो SBS का प्रोग्राम बस पेश किया जा रहा है। के घोसला का

0: एस पी एस के जरिए ये गाना है। के की आवाज में पेश की गए घोसला का घोसला फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो एस बी एस के जरिए अभी आपने सुना शेड्यूल ट्रैक से रेडियो एस बी एस का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: तूने पर्दा
0: धुरंधर फिल्म का नाम

रेडियो SBS की जरिए ये जनाब उस प्रोग्राम में पेश की गई। सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए डे या बे प्लस रेडियो की जरिए हॉलैंड देश के बीच में दूर दूर शहरों तक और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी दूर दूर शहरों तक अपना मोटर कार में अपना घरों में ये प्रोग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। उदित नारायण एन साधना सरगम, हमें तुमसे प्यार हो गया चुपके चुपके फिल्म का नाम।

के चुपके उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश की गई। सुनने वालों अभी तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी। एक प्रोग्राम जो बहुत सी सुनने वालों बस इंतजार कर रहे हैं। कुमार सानू, अलका एंड आनंद राचा।

Radio SBS के जरिए कुमार सानू अलका और आनंद राज आनंद की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में दुनिया की कोने कोने में इंटरनेट के सहारे ये प्रोग्राम आप सुन सक गए हैं और वो भी रेडियो एसबीएस .nl वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए। हंगामा फिल्म का गीत पेश होगा, एक फिल्म जो 2003 में रिलीज किया गया है, सोमवार उदित नारायण एंड अलका।

का दिन 8 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों को एक बार फिर से अनहेल खुद मोर्ग, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। शहरू तरह से ये प्रोग्राम 41 साल से एनन फिर तक यार से बस पेश किया जा रहा है। और आज भी ये प्रोग्राम को आप सुनते हैं दुनिया की कोने कोने तक। ये प्रोग्राम रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए, अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए आप सुन सकते हैं, भले देश के बीच में और प्रोविंसी साउथ होलैंड में डे या बे प्लस रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम सुनाई देता है, आपकी मोटर कार में, आपकी घरों में। तो गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश

तार जोर तोड़ से आते हैं। सभी को शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं और साथ ही साथ स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं, हमारा रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी तार कर रहे हैं। तो चले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ और तुरंत हम आपको ले चलते हैं पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम की ओर। फिल्म ताजमहल, उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। जो वादा किया है निभाना पड़ेगा।

निभाना पड़ेगा मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में फिल्म ताजमहल उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर। महबूब फिल्म का नाम 1962 का फिल्म है, नई 362 का

0: मन सरकस है।
1: और रेडियो SBS के जरिए शैलेंद्र सिंह और कृष्णा की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। ये प्रोग्राम को जरूर आप सुनते ही रहना। लता मंगेशकर प्रोग्राम में फिल्म हम लोग

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, आंसू बन गए फूल फिल्म का नाम, किशोर एनाश।

तमेर शहर की रहने वाली नलिनी गाना आज की ये प्रोग्राम में सुनना चाहते थे इसी तरह से रेडियो SBS की जरिए फिल्म गोलमाल उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई किशोर कुमार की आवाज में। सुन वालों आपको मालूम होना चाहिए कि इसी साल में 12 तारीख अप्रैल आशा जी की मृत्यु हो गई, आशा भोसले की मृत्यु हो गई मुंबई में इंडिया भारत देश में। आज जबकि आशा भोसले जिंदा होती तो आज उनकी जन्मदिन होते। आज सितंबर की 8 तारीख अफसोस के साथ आशा जी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन उनकी आवाज उनकी गाने अभी तक रेडियो के जरिए बस पेश किया जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में एक दो गाने हम पेश करने वाले हैं आशा भोसले की आवाज में जरूर, और जरूर आप सुनते ही रहना। आपको हम ले चलेंगे फिल्म का नाम समाजी, उसी फिल्म का एक गाना आशा जी की आवाज में बस पेश किया जाए।

जी की याद में, दोरों के रूप में आशा जी की याद में ये गाना बस पेश की गई। अगर आज आशा जी जिंदा होते तो आज उनकी जन्मदिन होते, आज मंगलवार 8 तारीख सितंबर, तो आशा भोसले की याद में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चलिए गाना और आशा जी की आवाज़ में गाना जो काफ़ी हमारी सुनने वालों पसंद करते हैं, हवस फिल्म का नाम।

की आवाज में फिल्म हवस का गीत पेश की गई है। आप सभी सुनने वालों की सेवा में स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-2266-6611। इसी तार की नंबर पर हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं और ऐप द्वारा भी आप स्टूडियो की ओर तार कर सकते हैं। एक गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, काफी पुरानी फिल्म का गीत होगा, 1957 का फिल्म का गीत होगा, आधी रोती फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

गाना गाना का वो मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आधी रोती फिल्म का नाम है, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी एंड लता, ब्लैक कैट फिल्म का नाम।

ब्लैक कैट फिल्म का नाम, उसी फिल्म से ये गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, देश विदेश में दुनिया के कोने कोने में सुनने वालों बस प्रोग्राम हमारा इस वक्त सुनते हैं पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम मोहम्मद रफी।

किशोर कुमार, किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मजबूर, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 10:13 व्यतीत हो चुका है, 3:13। आज मंगलवार का दिन है, 8 सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। चलिए गाना मन्ना डे की आवाज में पेश किया जा रहा है फिल्म किनारे किनारे 1963 का फिल्म 1963 का फिल्म मन्ना डे की आवाज में।

ये पुरानी फिल्म का गीत पेश की गई है, मन्ना डे की आवाज में फिल्म किनारे किनारे। सुन वालो, रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें, रिक्लाम हुआ सस्ती दामों में, आपकी हर एक काम बस किया जा रहा है इतनी सस्ती दामों में। आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, कोई भी रेडियो पर नहीं मिलेगा आपकी फरमाइश, 5 यूरो पर फरमाइश, और आपकी रिक्लाम भी सस्ती दामों में, इतनी सस्ती दामों में आपकी रिक्लाम कहीं पर भी नहीं पेश होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि DAB प्लस रेडियो के जरिए हमारा प्रोग्राम इन दिनों दूर दूर शहरों तक पेश किया जा रहा है, खासतौर पर पूरा के पूरा मिड नीदरलैंड में दूर दूर शहरों तक ये प्रोग्राम सुनाई देता है, और प्रोविंसी साउथ होलैंड में भी हमारा प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो के जरिए पेश किया जा रहा है। तो काफी शहरों में DAB प्लस रेडियो के जरिए प्रोग्राम सुनाई देता है, और आपकी फरमाइश से सस्ती दामों में 5 यूरो पर फरमाइश, और आपकी ये तमाम खबरें भी रिक्लाम भी सस्ती दामों में, मैंने कहा ना इतनी सस्ती दामों में आपको कहीं पर कोई भी रेडियो स्टेशन पर नहीं मिलेगा। चलिए लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है, कोहिनूर फिल्म का नाम।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और नितिन मुकेश की आवाज में ये गाना पेश की गई। एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई, फिल्म क्रांति। उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले फिल्म नसीब की ओर। आज की पुरानी फिल्म संगीतों का प्रोग्राम में लता जी की आवाज में ये गाना द बिग बी अमिताभ बच्चन का फिल्म नसीब का गीत पेश किया जा रहा है।

नसीब फिल्म का गाना भी इसकी गई लता जी की आवाज में, लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। चले एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में, फिल्म नौ

गाना पेश की गए फिल्म 9-2-11 मोहम्मद रफी और आशा जी के आवाज में गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गए मोहम्मद रफी एंड सुलक्षणा पंडित साजन की सहेली उसी फिल्म का गाना आपकी बार पेश किया जा रहा है आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी गाना

खासतौर पर राहत फतेह अली खान और जयेश गांधी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, मिलेंगे मिलेंगे फिल्म का नाम। 11:00 प्रोग्राम में 7 मिनट व्यतीत हो चुका है। आज का मौसम बदली बदली सा मौसम है, दोपहर की वक्त शाम के वक्त में बारिश का मौसम बस होने वाले हैं। तो रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कविता

अनु और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये खूबसूरत गाना उस प्रोग्राम में अभी आपने सुना। आज मंगलवार का दिन है, 8 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। फिल्म कुछ तो है, सोनू निगम एंड अलका, और गाना का बोल है क्या प्यार करोगे मुझसे। द मूवी कुछ तो है।

शहर उत्तरेख से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। अच्छी क्वालिटी साउंड में ये प्रोग्राम जो हमेशा हमारा फुल डिजिटल स्टूडियो से बस पेश किया जा रहा है। कुछ कुछ होता है फिल्म का नाम, कुमार सानू एंड अलका।

सानु और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुन वालों की सेवा में। मौसम जो है आहिस्ता आहिस्ता बदलने वाले हैं, बारिश का मौसम आने वाले हैं और आज का मेरा टेम्परेचर तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस होने वाले हैं। क्या दिल ने कहा उदित नारायण और अलका।

दिल ने कहा उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। आज की प्रोग्राम में एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू जी की ओर, द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स रेडियो एसपीएस की सरिया।

हंसरों मीठे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहित चौहान प्रोग्राम में होगा और मोहित चौहान की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, ये दूरियां।

और उदित नारायण के आवाज में बस पेश की गई है। एक गाना और उसके बाद प्रोग्राम में होगा खबरें। खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं। आतिफ असलम प्रोग्राम में रेस फिल्म

उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। फिल्म आन 2004 का रिलीज किया हुआ फिल्म है। सोनू निगम और अलका जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अनुराधा पोटवाल की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम आंखों में तुम हो।

अनुराधा पोटवल की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए सोनू निगम और अनुराधा पोटवल की आवाज में। आपको पहले भी कहीं देखा है, फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना।

पोर्टवेल की आवाज में गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम आपको पहले भी कहीं देखा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। चले प्रोग्राम में अब की बार अभिजीत एंड साधना सरगम की ओर।

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म डार्लिंग अदनान सामी एंड तुलसी कुमार प्रोग्राम में

भी सुनवालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और रोजाना की तरह आज भी बहुत सी सुनवालों बस प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का, जो सालों से आप सभी सुनवालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। उदित नारायण हम आपको ले चलते।

Bas aur Anuradha Potwal ki avans mein ye gana aaj ki program mein pesh ki gayi hai. सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं और ये प्रोग्राम सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी सुनाई देता है।

पंकज उदास और अनुराधा पोटवाल की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए हम आपको ले चलते हैं फिल्म दे दनादन, मिका सिंह, डोमिनिक और

रेडियो SBS की जरिए फिल्म भूल भुलैया नंबर 2, उसी फिल्म से गाना पेश की गई दे ताली। चले प्रोग्राम में फिल्म वेलकम की ओर।

शर्मा और ऐश्वर्या की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई दबंग फिल्म का नाम था। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना क्यों हो रहा है, बार बार देखो फिल्म का नाम।

मन्ना डे और गीता दत्त की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के ये प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जहरीला इंसान उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

जहरीला इंसान फिल्म का नाम, उसी फिल्म से ये खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम है जंजीर।

रेडियो SBS की सर ये एडो फिल्म ये वादा रहा उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले फिल्म यकीन की ओर लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। लता के बाद चले द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकीस की ओर हम आपको ले चलते हैं।

द फिल्म यहूदी मुकेश जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आस रहा हूँ। उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले आज के प्रोग्राम में फिर से लता जी की ओर हम आप भूले चलते हैं।

इसकर की आवाज में ये गाना पेश की गई, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। सुनने वालों चले प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में अबकी बार एक गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है उमराव जान। 1900

ये गाना आशा जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पीसीए रेडियो एसबीएस की जरिए सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-62-66-11 और बाकी हर एक इंफॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 032-65-65-60.

सभी सुन वालों की सेवा भी आसरो में देखिए, गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपके बार आप सभी सुन वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और

परमेश्वरी मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में सुमन कल्याणपुर की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपके बार ये गाना पेश किया जा रहा है

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा मीठे प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशुलि रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशुलि रामलाल, दी यू फॉर हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt u reageren? Kan het altijd? Surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met de studio naar 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में, मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

अजीब दास्ता है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। इसके सॉन्ग दो लता मंगेशकर एंड कम्स आउट द फिल्म वक्त। गाँव दा फेदर मेट आउट द फिल्म गुंजन सक्सेना। गजॉँ दो रेखा भारद्वाज कम दोरी टूट गईयाँ।

मेरे चंदा मेरे नन्हे, आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आखिरी खत से, और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में। चौधवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये बेहतरीन गाना आप सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना शान और साधना सरगम की आवाज में कुछ ना कहो का टाइटल सॉन्ग, और अब आप सुनिए फिल्म रामलीला से अरिजीत सिंह की आवाज में लाल इश्क की मलहा।

कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा न था। बेहतरीन गाना आपने सुना संदेश सौंडलिया की आवाज में और साथ ही साथ साधना सरगम की आवाज में भी फिल्म सोचा न था से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म हैरी मेट सेजल से।

फिल्म निकाह से आपने सुना सलमा आगा की आवाज में, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए। खुशियां और गम सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है।

कितना प्यार करते हैं तुमको सनम, मेरे दिल से पूछो ना। आपने सुना फिल्म बनारस से हिमेश रेशमिया की आवाज में। और अब आप सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में अगला गाना प्रोग्राम रेडियो SBS का। फिल्म धूम 2 से आप सुनिए क्रेजी क्यारे।

भर दो झोली मेरी वास का सॉन्ग दोर अदनान सामी खान है क्वाम आयो द फिल्म बजरंगी भाईजान अत फोहत लीजिए एन अत प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS इस खसोंग दोर शान एन अलका याचनिक कॉम तो आयो द फिल्म तलाश एंड इट इज तूने कहा जब से हाँ

मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है वॉज आउट द फिल्म आशिकी एंड इज गजोंग डोर उदित नारायण एंड अनुराधा पौडवाल। Het volgende liedje in het programma Gitom Kelleher is gezongen door Nawazuddin Siddiqui. Uit de film Bole Churia komt Swaggy Churia.

मुझे साजन के घर जाना है इस खसोंग दूर अलका याचनिक सोनू निगम एंड जसपिंदर नरूला एंड कवाम आउट द फिल्म लज्जा het volgende liedje in het programma Gieton Kelleher via Radio SBS is gezongen door Sunidhi Chauhan en KK. Uit de film Basik Pal komt Ashk Bhi Muskuraye.

ये बेखुदी दीवानगी आउट द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। एन खसाओ दूर जुबे नौटियाल कॉम्प्ट होने लगा आउट द फिल्म एंथम।

गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ। आओ ना, क्वम अ द फिल्म क्यों हो गया ना, एन एतिस का अख्तियार दूर विवेक ओबरॉय एन ऐश्वर्या राय दी तैयार वारस आर डेट। Uit de film Want It komt het volgend liedje via Radio SBS, gezongen door Wajid en Amrita Kuk. Just love me, love me, love me.

0: मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया आवास अवैध फिल्म मुझे कुछ कहना है। दिल्ली तेज का चौहदोर कुमार सानू एंड प्रीति अवैध फिल्म यादें कम तो फोहत लीजिए फिया रेडियो SBS। जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। बेहतरीन गाना आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म मैंने दिल तुझको दिया है से। तो अब आप सुनिए फिल्म शुभ मंगल सावधान से अरिजीत सिंह की आवाज़ में राख।

मेरा जीवन भी संवारो इस अयोध्या फिल्म आखिरी खत एंड इस गजोंग दो लता मंगेशकर. De film Student of the Year komt het volgende liedje via Radio SBS. Gezongen door Vishal Latlani, Payal Dev en Kishore Kumar. The Giovanni Song.

मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आपने सुना ये बेहतरीन गाना मुकेश जी की आवाज में फिल्म श्री 420 से, और अब आप सुनिए फिल्म आवारा से। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की, लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए बेहतरीन गाना।

पहला प्यार अरमान मलिक की आवाज में आपने सुना फिल्म कबीर सिंह से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में फिल्म आजाद से है। लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए कितना हसी है ये मौसम।

Radio SBS luister je via de website www.radiosbs.nl. Wilt u reageren, kan het altijd. Bel maar gerust naar de studio met 032-62-66-11. En voor alle andere info kun je altijd bellen met 032-65-65-60. Aage bhi jaane na tu, piche bhi jaane na tu. Jo bhi hai, bas yahi ek pal hai. आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म वक्त से, और अब आप सुनिए फिल्म आज का अर्जुन से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गोरी है कलाइयां, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां।